शानदार डिस्प्ले एआई पावर्ड क्यामेरा दुई वर्ष को वारंटी सहित रेडमी ए सेवेन मा 5200 mAh तथा रेडमी ए सेवेन प्रो मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।